0: where you are by downloading the Leica Radio mobile app now.
1: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410।
3: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
0: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक न पाए मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए मन्ने मग न चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध।

मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एको वेस एक दूजी बोला खोए लख होवें लखवीस।

जोर जोर ना जीवन मरण है जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत

0: Tasty track of the hour. Sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
1: This is Donny Brasco on Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Traffic and travel.
3: It's good news. The M4 elevator section has recovered after earlier congestion west Brentford to Heston services. The M4 onto the elevator section, though, East Hayes to Brentford, 20 minutes. And Phillip Lane at Tottenham, we've got fire services activity still blocked from Lawrence Road to Dongola Road. Traffic is managing, but there is diversions for buses 230 and 341. High Street North, it's a one-way street. We've got police incident bus lane closure as well from Thorpe Road to Kempton Road. And the M11 South, delays of 10 minutes before North Circular Road. Docklands Light Railway, faulty train at Bank, severe delays between Canning Town and Bank, Canary Wharf and Shadwell, and West Ferry and Tower Gateway. And that's the latest traffic and travel.
4: When I had vacancies to fill.
5: When our business expanded and I needed more skilled workers.
6: When I wanted to give a young person their first job, but wasn't sure where to start.
7: When someone asked about apprenticeships and I didn't have an answer.
8: When you're ready to hire, we'll help find the right talent to build your future workforce with tailored no-fee support from local Job Centre Plus recruitment consultants. The UK government is backing your business. Visit business.gov.uk/recruit to find out how. Eligibility criteria apply.
1: Like our radio. This part of the show is brought to you by Anupama, every day at 7:30 p.m. on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.
9: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को, बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग, और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
10: दुबई इज एन अपॉर्चुनिटी, सो नाउ बी अ पार्ट ऑफ इट. क्रिएट वेल्थ विद अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
1: लंदन तैयार हो जाओ, आ रहा है सेगा नवरात्रि 2026.
11: 9 से 10 अक्टूबर प्री नवरात्रि
1: और 11 से 19 अक्टूबर नवरात्रि का जश्न.
11: काजल पांड्या और अविनाश बारोट के साथ लाइव म्यूजिक पर झूमो, गरबा खेलो.
1: 17 अक्टूबर किड्स गरबा और 24 अक्टूबर शरद पूनम गरबा भी.
11: मिलते हैं एशियन कम्युनिटी सेंटर, व्हाइट हार्ट रोड, लंदन, SE18 1DG.
1: टिकट बुक करो segalondon.co.uk.
11: सेगा नवरात्रि, भक्ति, मस्ती और गरबा.
12: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
13: देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
12: डेजर्ट सफारी,
13: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम.
12: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे.
13: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410.
1: साफो ट्रेवल. Auto protected.
14: Star Studio 18 and Panorama Studios Production present.
15: मैं बेटे के लिए justice चाहिए.
16: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए.
14: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat, and many more.
17: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा? बताना मुश्किल है.
14: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
17: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आखिरी हिस्सा बाकी है.
14: Releasing nationwide by Zee Studios.

0: perfect food storage solution. Satco Food Containers.
1: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
2: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
1: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
2: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
1: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
3: Dosti, masti ane emotions ni ek anokhi story.
4: Samad ek kaam kar medical dile ane nakta chahiye. Nakta chahiye itla?
3: Soul Sutra Productions presents Mitrata, friendship ni love story. Produced by Parthiv Gohil and Mansi Parekh. Directed by Onil Karnik.
5: Tu ka ando chhe? Agar maro break mare to pachar maro break mare se.
3: Starring Viraj Khilani, Deep Vaitya, Vishal Parekh and Vishwa Joshi. Mitrata in cinemas now. UK release details mate Instagram par follow karo Bakrania Media.
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574 8410। दैट्स 0208574 8410।
7: साउथ हॉल ट्रेवल Auto protected.
8: Star Studio 18 and Panorama Studios Production present.
9: मैं बेटे के लिए justice चाहिए।
10: मुझे justice नहीं, बदला चाहिए।
8: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat, and many more.
11: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा? बताना मुश्किल है।
8: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
11: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आखिरी हिस्सा बाकी है।
8: Releasing nationwide by Zee Studios.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
2: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
1: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
2: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
1: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस.
2: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
3: Hi, this is your weekend ka saathi Anuj Radia, and you can catch my show Brunch and Beats every weekend, Saturday and Sunday between 10 a.m. to 1 p.m. across Greater London on Lyca Radio.
4: The Breakfast Blend, perfectly brewed by you, Donny Brasco on Lyca Radio.
5: Diamond Track of the Hour is sponsored by Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler committed to value, quality and transparency. That's a Malabar promise.

0: लंदन तैयार हो जाओ, आ रहा है सेगा नवरात्रि 2026।
1: 9 से 10 अक्टूबर प्री नवरात्रि
0: और 11 से 19 अक्टूबर नवरात्रि का जश्न।
1: काजल पांड्या और अविनाश बारोट के साथ लाइव म्यूजिक पर झूमो, गरबा खेलो।
0: 17 अक्टूबर किड्स गरबा और 24 अक्टूबर शरद पूनम गरबा भी।
1: मिलते हैं एशियन कम्युनिटी सेंटर, व्हाइट हार्ट रोड, लंदन, SE18 1DG।
0: टिकट बुक करो SegaLondon.co.uk।
1: सेगा नवरात्रि, भक्ति, मस्ती और गरबा। We'll be right back.

0: Mamster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
2: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज. रेडियो डिजिटल या इवेंट सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड. जल्दी करिए कॉल नाउ 0207-132-158 या लिखिए sales@laikaradio.com.
3: This is Laika Radio.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
2: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
1: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
2: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
1: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस.
2: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
3: Leica Radio is proud to support the Mental Health Film Festival, Unspoken, featuring short films, feature films and panel discussions across London between October 9th and 11th.
4: Ranjishe sahi dil hi dukhane.
5: Aapka naya station, Leica Radio Ghazals, bahut jald aa raha hai.
3: This is Leica.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
0: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
1: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
0: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
1: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
0: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
3: फोन 0208574 8410।
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।

बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। It's अंताक्षरी टाइम विद

0: मुझे ऐसा मिला मोती आसमान नंबर फ्रॉम द ईयर 1985 माय क्लासिक हिट द आवर प्लेइंग फॉर यू हियर ऑन रीलोड एंड इफ यू जस्ट जॉइन मी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एंड वेलकम आई एम विश भटनागर एंड आई एम कीपिंग यू कंपनी अक्रॉस द कैपिटल अंटिल 4 पीएम एंड ऑफ कोर्स आई डिड दिस वन फॉर ए पर्टिकुलर रीजन ए इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड बी The incredible vocals, the iconic vocals of the one and only legacy that is Lata Mangeshkar. And we would have been celebrating her 97th birthday today. Absolutely incredible one. Let's keep going with the music.
1: Like a radio.
2: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: So undoubtedly you'll be hearing a whole load of tributes to Lata Ji across our network today. Let's do this one. It's your feel-good track from Bar Bar Deco. Vocals of Arman Malik and Neeti Mohan. It's So Aasman.

नीतू जट नू पसंद होगी गर्मी च ठंड होगी मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी तिरछी नजर तेरी आशकां लई भंग होगी।

0: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
1: देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
0: डेजर्ट सफारी,
1: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
0: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
1: तो दुबई के लिए तैयार? यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410। दैट्स 8574-8410।
2: साहो ट्रैवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
3: दुबई इज एन अपॉर्चुनिटी, सो नाउ बी अ पार्ट ऑफ इट। क्रिएट वेल्थ विद अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ। द न्यू प्रॉपर्टीज दुबई हैज समथिंग फॉर एवरीवन विद इट्स एंबिशियस 11-11 इनिशिएटिव एमिंग टू कंप्लीट 11 लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स इन जस्ट 11 मंथ्स फीचरिंग व्यूज, ओएसिस, ओशंस, एलीट्स, फैशंस एंड स्पोर्ट्स। देयर इज एन अपॉर्चुनिटी वेटिंग फॉर यू, सो व्हाई वेट? बी पार्ट ऑफ दुबई'स ग्रोथ स्टोरी। कॉल द न्यू प्रॉपर्टीज दुबई लंदन ऑफिस टुडे ऑन 0203-963-5757 to arrange your meeting.
2: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
3: London, get ready for an unforgettable night.
4: Legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
3: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
4: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
3: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
4: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
3: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
5: Elevate every meal with Hira. From spice blends to rich Hira sauces and Hira dals. Discover the true taste of South Asia at your local ethnic grocery store. Unbeatable quality, authentic flavor. Hira, king in quality, king in taste.
6: Al Noor, Purana Baitamat Nam. Nayi range ke saath. Premium pulses. Pure, fresh, full of natural goodness. Everyday dal se lekar wholesome meals tak. Aapke Asian grocery stores par available hai. Al Noor, taste the difference.
2: Next, Raj Batten is up next with Drive Time
7: on Leica Radio.
2: London, 90s throwback plays now.
7: Leica.

0: गरम सत समाज यूके के साथ मनाइए नवरात्रि गरबा
1: 11 से 20 अक्टूबर तक 10 रातों का जश्न और 24 अक्टूबर को स्पेशल शरद पूनम
0: आइए नक्षत्र हॉल फेल्थम TW13 7NA
1: रात 8 बजे से देर रात तक टिकट सिर्फ £5 पर पर्सन पर नाइट 5 साल से छोटे बच्चे फ्री
0: फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आइए जमकर गरबा खेलिए टिकट्स और जानकारी के लिए महेंद्र भाई को कॉल करें
1: 07956458872
0: तो मिलते हैं गरबा में

0: music, madness, family entertainment and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
1: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
0: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
1: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
2: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
3: हिमालय कारपेट्स की धड़कती हुई सेल, गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल, रूम साइज एग्रीमेंट्स 30 पाउंड से शुरू, तमाम रोल स्टॉक पर मार्क प्राइसेस पर 20% ऑफ, लेमिनेट फ्लोरिंग फ्रॉम 9 पाउंड स्क्वायर मीटर, एलवीटी फ्लोरिंग फ्रॉम 12 पाउंड स्क्वायर मीटर, रग्स बेड्स सोफास सब पर 50% ऑफ। कारपेट्स की तो ये सबसे बड़ी सेल है, चूकिए नहीं। विजिट हिमालय कारपेट्स.com और कम एट हिमालय कारपेट साउथ हॉल अपोजिट द ईलिंग हॉस्पिटल।

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Dosti, masti ane emotions ni ek anokhi story.
2: Samad ek kaam kar medical dele ane nakta chahiye. Nakta chahiye itla?
1: Soul Sutra Productions presents Mitrata Friendship ni Love Story. Produced by Parthiv Gohil and Mansi Parekh. Directed by Onil Karnik.
3: Tu gando chhe? Agar maro break mare to pachar maro break mare chhe.
1: Starring Viraj Khilani, Deep Vaitya, Vishal Parekh and Vishwa Joshi. Mitrata in cinemas now. UK release details mate Instagram par follow karo Bakrania Media.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574 8410। दैट्स 8574 8410।
5: साउथ हॉल ट्रेवल at

0: Visit starters.co.uk or call
1: 0208-900-2323.
2: करम सत समाज यूके के साथ मनाइए नवरात्रि गरबा
3: 11 से 20 अक्टूबर तक 10 रातों का जश्न और 24 अक्टूबर को स्पेशल शरद पूनम
2: आइए नक्षत्र हॉल फेल्थम TW13 7NA
3: रात 8 बजे से देर रात तक टिकट सिर्फ £5 पर पर्सन पर नाइट 5 साल से छोटे बच्चे फ्री
2: फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आइए जमकर गरबा खेलिए टिकट्स और जानकारी के लिए महेंद्र भाई को कॉल करें
3: 07956458872
2: तो मिलते हैं गरबा में
4: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
5: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
6: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
7: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
8: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
7: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
8: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
7: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
8: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
7: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
8: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
9: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beet, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
10: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
9: Jaimin Foods Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
11: अल नूर पुराना बाएतमाद नाम नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है अल नूर टेस्ट द डिफरेंस मीनार ज्वेलर्स अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com कॉल 0208-767-7627.
12: Elevate every meal with Hira. From spice blends to rich Hira sauces and Hira dals. Discover the true taste of South Asia at your local ethnic grocery store. Unbeatable quality, authentic flavor. Hira, king in quality, king in taste.
13: 90s throwback plays now.
14: Like a radio.

0: मेरे रश के कमर इन द वोकल्स ऑफ नुसरत फतेह अली खान साहब एंड राहत फतेह अली खान साहब. वेल आई होप यू गेस्ट द मूवी. वेल लेट मी गिव यू अ हिंट. अजय देवगन वाज देयर इन दिस मूवी. आई होप आपने गेस कर लिया हो. वेल हियर्स अ मैसेज फ्रॉम मर्सिडीज बेंज वैन एंड इन एसोसिएशन विद लाइका रेडियो नेटवर्क. व्हेन यू रन योर ओन बिजनेस योर वैन इजंट जस्ट योर ट्रांसपोर्ट, इट्स योर लाइवलीहुड एंड रेपुटेशन. दैट्स व्हाई मर्सिडीज बेंज created the uptime promise, a complete suite of business advantages. Things like 24/7 roadside assistance, extended workshop hours, real-time vehicle monitoring. In fact, everything you need to stay in control of your van downtime and keep your business moving. Search Mercedes-Benz today and discover their uptime promise. Terms and conditions apply. Learn more at mbvans.co.uk. Uptime promise.
1: Leica Radio. Gold Rate is sponsored by Gold Bank London. Visit us online at gold-bank.co.uk or visit us in store on 215 The Broadway, Southall.
0: So gold's trading at £100 and 23 pence per gram.
1: Gold Rate is brought to you by Gold Bank London. Gold prices have hit a record high. It's time to sell your unwanted gold. Sell your gold with Gold Bank London, 215 The Broadway, Southall, or buy online at gold-bank.co.uk. Trending track of the week. Leica Radio.

है न्यूज़ में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: साथिया ये तूने क्या किया. दिस लवली ट्रैक फ्रॉम द 90s इन द वोकल्स ऑफ एसपी बालासुब्रमण्यम एंड चित्रा फ्रॉम द ब्यूटिफुल मूवी लव. आई लव रेवती एंड सलमान खान इन दिस मूवी. इफ यू हैवंट वॉच्ड इट डेफिनेटली वॉच इट.
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई. दिस ब्यूटिफुल ट्रैक इन द वोकल्स ऑफ राहत फतेह अली खान साहब एंड तुलसी कुमार आर आर्टिस्ट ऑफ द वीक. बहुत ब्यूटिफुल कॉम्पोजिशन बाय प्रीतम दा. वेल वन मोर ट्रैक दिस आवर एंड वक्त हो चुका है फॉर मी टू से बाय. वेल हमें राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते. बट यू कीप लिसनिंग टू लाइक आवर रेडियो बिकॉज़ देयर्स ऑलवेज ग्रेट म्यूजिक ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन लाइक आवर रेडियो.
1: Magical moments of Radio Wally's Lazy Lounge.